वाले ये कलाकार ना होते तो शायद भारतीय शास्त्रीय संगीत सारे को आगे

आपका जन्म स्वागत की बात होगी परिवार से हुआ है, बल्कि आपके पिताजी को विधवा बदलते हैं, फिर आपने सारे की

गाँव से मैं बहुत प्रभावित था बचपन से, तो मेरे पिताजी से कहा कि इसको बना के दे दिया।

0: आपका था, दादाजी की ओर आकर्षित हो गया। तेरा विशेषा का क्या हुआ?
1: शिक्षा हुई, एक दिन गया था स्कूल और उन दिनों में ये मास्टर लोग बच्चों को मारते थे, तो मेरी भी कुछ गलती हो गई, तो मास्टर ने मुझे बुला के इसी हाथ में लेकर एक पेंसिल यहाँ रख के दबाना शुरू किया और मुझे ऐसा लगा कि मेरी सादगी से बहुत नाखुश है और मैंने घर जाके दादाजी से कहा कि मैं नहीं जाऊँगा स्कूल। और फिर जब मैंने बताया कि मेरी मुंडियों का मामला है तो मेरे पिताजी ने भी कहा कि अच्छा बंद कर दूंगा मैं उसको। उसके बाद में कभी स्कूल नहीं गया। जो भी कुछ शिक्षा मिली वो सारी गई।